0: कैसे हो सकता है तुझसे मुनहरिफ इस दांत कैसे हो सकता।
1: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम। इंस्पायर 105.1 एफएम।
2: Assalamu alaikum. My name is Yusuf Aslam. I am the founder and director of

0: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार की तशहीर करना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की सेल्स टीम से राब्ता कीजिए। इंस्पायर एफएम की सेल्स टीम से राब्ते के लिए 01582481810।

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से राब्ता कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: Move 410 aa gaya hai. This girl can ka naya challenge jisme har koi shamil ho sakta hai. Bas 10 minute move kare mahine mein 10 dafa. Mujhe to ab zyada hi energy feel ho rahi hai aur confidence bhi.
2: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज़ वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं. जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.

नंबर एक तो ये है कि वो मालदार हो, चलो पैसे वाली होगी तो मेरे लिए भी कोई आसानी होगी। नंबर दो, असबो नसब को देखा जाता है जी, किस खानदान से है जी, किस खानदान की वो लड़की है। तीसरे नंबर पर देखा जाता है कितनी असीलो असीनो जमील है, खूबसूरती देखी जाती है। और चौथे नंबर पर उसका दीनदार होना देखा जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जब इंतखाब करो तो दीनदार औरत को इंतखाब करो, यानी इन चारों में से। बाकी पहली चीज़ें भी बहुत ही अच्छी हैं, अगर साहिब माल है तो कोई अरज नहीं, असब नसब वाली है तो सोने पर सुहागा, खूबसूरत है तो ये और ही बहुत उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन दीनदार भी हो, अगर पहली तीनों भी चीज़ें पाई जाएं लेकिन वो अगर है बेदीन तो बाज़ औक़ात वो उन पर भी गैन लग जाता है, वो भी तीनों क्वालिटी जो है वो दागदार हो जाती है। इसलिए ये है कि औरत दीनदार हो, इसको अहमियत दो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। अब अगर इस हदीस की रोशनी में हम देखें कि इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी औरत से निभा करे जो बाहसियत हो, बड़े अच्छे किसी खानदान कबीले की हो, और औरत की वजह से अपने औलाद के नसब में बुलंदी और अता होती है। मुख्तसर यह है कि आमतौर पर लोग औरत से निकाह करने के सिलसिले में मजकूरा चारों चीज़ों को बतौर ख़ास मलूज रखते हैं कि कोई शख्स तो मालदार औरत से निकाह चाहता है, बाद लोग अच्छे हसब नसब की औरतों से निकाह करके उनको बीवी बनाना चाहते हैं। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि एक हसीनो जमील औरत उनकी रफीका हयात बने, और कुछ नेक बंदे दीनदार औरत को फोकियत देते हैं। लिहाजा दीनों मजहब से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स को चाहिए कि वह दीनदार औरत ही को अपने निकाह के लिए पसंद करें, क्योंकि इसी में दुनिया की भी भलाई है और आखिरत की भी सआदत है। हदीस मुबारक के आखिरी बात उसमें यही इरशाद फरमाया कि अपने लिए दीनदार औरत को इख्तियार करो। एक और हदीस में आयत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई शख्स निकाह का पैगाम भेजे और तुम उस शख्स की दीनदारी और उसके अखलाक से मुतमैन और खुश हो तो उसका पैगाम जो है मंजूर करके उसे निकाह कर दो, अगर ऐसा ना करोगे तो ज़मीन पर फितना और बड़ा फसाद बरपा हो जाएगा। ये इरशाद ग्रामी दरअसल औरतों के सरपरस्त और वलियों से एक खिताब और उनके लिए ज़रूरी हिदायत है कि अगर कोई दीनदार और अच्छे अखलाक व अतवार का अमल शख्स तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन वगैरह से निकाह का पैगाम भेज के निकाह करना चाहता है तो उसका पैगाम मंजूर कर लो और उससे निकाह कर दो, अगर ऐसा ना करोगे बाद ऐसे शख्स के पैगाम को नज़रअंदाज करके सिर्फ किसी मालदार साहिब सरवत का हो, बद किरदार ही क्यों ना हो, उससे निकाह कर दोगे तो उसका नतीजा ये होगा कि अक्सर औरतें इससे फिर बाद में परेशानी का सामना उनको होता है। तो इस तरह ये है कि अब एक सवाल कि कौन सा निकाह बरकत वाला है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जो मेहनत के लिहाज से आसान हो, यानी ऐसा निकाह जिसमें बीवी का हक मार थोड़ा हो, औरत ज़्यादा मालो असबाब और हैसियत से ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी यानी रोटी कपड़ा तलब करके मर्द को परेशान ना करे, बल्कि शौहर की तरफ से जो कुछ और जैसा मिल जाए बरज़ा और रग़बत उस पर कनात करे। इस तरह जहेज की रस्म भी बुरी है जिसकी वजह से औरत बूढ़ी हो जाती है, उसका वबाल भी उसके सरपरस्तों और माँ बाप पर है। यानी कि आजकल माशरे के अंदर बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा देखा देखी जहेज का निज़ाम बन गया कि माँ बाप बेचारे अगर गरीब हैं तो पूरा ही नहीं कर सकते, और जिसकी दो तीन चार बेटियाँ हो उनको ब्याहना है तो एक एक के लिए इतना इतना जहेज दिया जाता है महंगाई के इस दौर में। तो ये इस रस्म को भी ख़त्म होना चाहिए। हाँ, ज़रूरत की कुछ चीज़ें अपनी खुशी के साथ दे देना ये सुन्नत भी है।

0: या हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी को भी कुछ चीज़ें दी, लेकिन आज से बढ़ के ये कुछ करना मुनासिब भी नहीं, जायज़ भी नहीं। और उसके अलावा ये एक और बात भी है कि अगर मर्द की तरफ से लिस्ट दी जाती है या मुतालबा किया जाता है तो ये और भी ज़्यादा बुरी बात है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ बुरी रस्में भी फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरों में आ जाती है, उनका जिक्र किए बगैर भी ये मौजू मुकम्मल नहीं होता। कुछ ऐसी रस्में हमारे माशरे के अंदर जो जड़ पकड़ चुकी हैं। मुसलमानों की बदकिस्मती है कि निकाह जैसा पकीजा मामला भी गैर मुसलमों की नापाक रस्मों और मुल्की रिवाजों से महफूज नहीं रहा, बल्कि वाकई है कि इस मुल्क की गैर शरी रस्में जिस कसरत और शिद्दत के साथ मुसलमानों की शादी ब्याह के मामलों में दाखिल हो गई, उसने निकाह के इस्लामी और मसनून तरीके को बिल्कुल ही ओझल कर दिया है। बस एक तड़का निकाह का लगा देते हैं, बाकी सारा कुछ गैर शरी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और अब तो जिस कदर रस्में रायज हैं या पहले रायज थी, इन सब का अहाता करना भी नामुमकिन हो गया। ताहम इस मौके पर ज़रूरी मालूम होता है कुछ रस्मों और बिदतों का जिक्र कर दिया जाए ताकि उनसे बचने की कोशिश की जाए। मिसाल के तौर पर मजामी ढोल वगैरह का इस्तेमाल, नाच गाने और इस तरह ही जो सेराबंदी होती है, और कई एक ऐसे इसराफ और फजूल खर्ची की जाती है, तो ये चीज़ें जो हैं इनसे जितना मुमकिन हो अपने आप को बचाना चाहिए ताकि निकाह जो शरी है मसनून है उसके अंदर बरकत बरकरार रहे। उसके बाद आखिरी हिस्सा हमारे प्रोग्राम का यह है कि औरतों के हकूक क्या है। इस्लाम ने बहसीयत एक मजहब एक दीन अदल व इंसाफ के तकाजों को पूरा किया। ये खैर और रहमत का मजहब है और इस्लाम फितरी तौर पर इंसानों के हकूक का आलमबरदार है। इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया वो दुनिया की किसी भी मजहब ने नहीं दिया, लेकिन हर चीज़ के लिए अल्लाह ने जो ज़ाब्ता और निज़ाम रखा है, अगर उस ज़ाब्ता और निज़ाम को हटा दिया जाए तो इससे फ़ायदे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें शरी तौर पर शर शामिल होगा, फितना और फसाद बपा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 उंगलियाँ बराबर और एक जैसी नहीं बनाई। अगर कोई मसावात का दावादार कहे कि सरासर नाइंसाफ़ी है, हम सबको बराबर करेंगे, भला बताओ इसका अंजाम क्या होगा। इसी तरह चलने के लिए अल्लाह ने पाँव बनाए हैं। कोई मसावात का दावादार कहे कि हमेशा पाँव के बल ही चलना ये सरासर नाइंसाफ़ी है, अब हमें बजाय पाँव से चलने के सर के बल चलेंगे, बताओ इसका अंजाम क्या होगा। इस तरह को मॉडर्न ज़माने की तरक्की माकूस का मगलूब कहे कि खाना हमेशा मुँह के जरिए खाया जाता है, अब हम बराबरी की बुनियाद पर नाक के जरिए खाना ठोसेंगे, बताओ इसका अंजाम क्या होगा। इसी तरह मर्द और औरत की साख्त और जिस्म की बनावट एक जैसी नहीं, इसी तरह उनके वज़ायफ़ और जिम्मेदारियाँ भी एक जैसी नहीं। अगर एक जैसी जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ आयद होते तो जिस्म की बनावट भी एक जैसी होती। तो जिस तरह एक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अलग अलग काम और फ़राइज़ हैं, मगर उनको छोड़ कर उनसे दूसरा काम लिए जाए, मसलन हाथों से चलने का काम, नाक से खाने का काम वगैरह, तो जिस्म का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह मर्द औरत के अलहदा अलहदा फ़रायद और जिम्मेदारियाँ, अगर उनमें रद्दो बदल किया जाएगा तो इंसानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कानून फितरत की मुखालफत होगी। अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे लगाया था कि वह कमा कर औरत की कफालत करे, पहले बाप या भाई की हैसियत से, फिर शौहर की हैसियत से, मगर अफसोस के तहज़ीब आज़र ने यह बड़ा एक जुल्म किया है, जो उसके ज़िम्मे फरीज़ा था वो भी औरत पर डाल दिया, यानी जो मर्द के ज़िम्मे फ़र्ज था वो औरत पर डाल दिया। अब औरत पर कितना बड़ा जुल्म है कि वो अपने फितरी वज़ाइफ और ज़िम्मेदारियाँ यानी बच्चे पैदा करना, उनको पालना, ये भी निभाए और पूरा करे और फिर रोज़ी भी कमाए, तो डबल ज़िम्मेदारी औरत पर आई। मर्द पर सिर्फ एक ज़िम्मेदारी आई, हालांकि औरत पहले भी कमज़ोर है और उस पर ज़िम्मेदारी को जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी परवरिश करना, ये बहुत ज़्यादा आम ज़िम्मेदारी है। औरत के लिए आसानी का मामला किया जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा उसको तकलीफ में डाल दिया गया कि तूने बच्चे भी पैदा करने हैं, तूने उनको पालना भी है, तूने उनकी तरबियत भी करनी है और फिर साथ नौकरी करके पैसे भी घर लाने। और फिर इस खिलाफ फितरत जो एक काम है इसको करके फिर इसका नाम रखा जाता है तरक्की, एडवांसमेंट, हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो कहते हैं हम औरतों मर्दों को बराबरी की सतह पर लाएंगे, तो उनको चाहिए था कि बच्चे भी अगर मिसाल के तौर पर बराबरी की सतह पर लाना है तो फिर हर लिहाज से होना चाहिए। अगर दो औरत के दो मर्द के होते ऐसा नहीं होता, औरत ही का काम है, उससे बच्चे पैदा होते हैं और मर्द जो है उनकी परवरिश करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनको जरूरियात का ख्याल रखते हैं। हर लिहाज से बिल्कुल बराबर खड़े करना ये बिल्कुल गैर फितरी काम है। और फिर इस्लाम ने औरत को विरासत के अंदर भी साथ आ फरमाया। इस्लाम से कबल का जो अरब माशरा है उसमें औरत का विरासत में कोई हक नहीं था। दलील ये थी कि औरत कमज़ोर है, ना मुआशी दौड़ धूप कर सकती है, ना अपना और ख़ानदान का दिफा इसके बस में और ना माले गनीमत उसके ज़रिए हासिल हो सकता है, लिहाजा ख़ानदान की दौलत की वारिस वो नहीं हो सकती। इस तरह कम सिन लड़के भी विरासत से महरूम रखे जाते थे, सिर्फ बालग मर्द जो दुश्मन का मुकाबला कर सकें वो विरासत का हिस्सा पाते थे। ये अरब माशरे का एक रस्म व रवाज था। और फिर विरासत में इस्लाम जब आया तो उसने मर्द और औरत दोनों को हक दिए। अरब का माशरा ही नहीं, दुनिया के सभी माशरों ने इसी किस्म के दलाइल की बुनियाद पर औरत को विरासत से महरूम रखा था। ये नरीना औलाद का और इससे भी बड़ी औलाद का हक समझा जाता था। इस्लाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और ऐलान किया कि विरासत में सब इस तरह मर्दों का हक है, इस तरह औरतों का हक है। फरमाया गया कुरान पाक में कि लिर्रिजाल नसीबु मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून वल निसाए नसीबु मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून मिम्मा कल्ला बिनु ओ कसुर। फरमाया गया कि मर्दों का भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा है और औरतों का भी इस माल में हिस्सा है जो माल के उनके बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो। इस उसूल के मुताबिक कुरान मजीद ने विरासत में औरत और मर्द के हकूक मुतय्यन कर दिए। बाद तफसीलात हदीस और फिक में मौजूद है और औरत और मर्द उन दोनों को जायदाद में से हिस्सा मुकर्रा दिया जाएगा। इस्लाम ने विरासत को ख़ानदान में महदूद रखा है और ख़ानदान के अफराद के दर्जा बदर्जा हुकूक मुतय्यन किए। इसमें पहला और सबसे बड़ा हक ये है, सूरह निसा में फरमाया गया आयत नंबर 11, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैन, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के हक में हिदायत अदा करता है, एक मर्द का ऐसा दो औरतों के से के बराबर है। अब इससे चंद एक बातें मालूम हुई। औलाद में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। विरासत सिर्फ लड़कों का हक नहीं, इसमें लड़कियों को भी हिस्सा मिलेगा। नंबर दो, एक लड़के का ऐसा दो लड़कियों के बराबर होगा। फर्ज कीजिए कि मैयत का एक लड़का और दो लड़कियां हैं तो विरासत तीन हिस्सों में तकसीम होगी। यानी अगर एक बच्चा या एक बच्ची है तो तीन हिस्सों में तकसीम होगी, एक हिस्सा जो है वो बच्ची को मिल जाएगा और दो हिस्से जो है वो बच्चे को मिल जाए। दो लड़कियां और एक लड़का हो तो विरासत के चार हिस्से होंगे। यानी इसी तरह जो तकसीम होगी, दो हिस्से यानी निसब तो दो लड़कियों को मिलेगा और दो हिस्से जो है वो लड़के को मिलेंगे। फिर इरशाद फरमाया गया सूरह निसा में कि अगर दो से ज्यादा औरतें हों तो उनके लिए मैयत के तरके का 2/3 है। तो इस तरह कुरान पाक के अंदर बकायदा तौर पर औरतों को हिस्सेदार ठहराया गया विरासत का। माँ बाप का जो हक है औलाद के बाद विरासत में माँ बाप को हक दिया जाता है। قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں ولی ابوی لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فان لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلامہ الثلث فان کان لہ اخوۃ فلامہ السدس۔ فرمایا گیا اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا ایسا ہے اس کے ترکہ میں سے اگر میت کی اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ وارث ہو رہے ہیں تو اس کی ماں کا حصہ ایک تائی ہے، اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو اس کی ماں کا حصہ 1/6 ہوگا یعنی 1/6۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کے اندر میاں اور بیوی کا جو حق ہے وراثت میں، میاں بیوی کے حقوق قرآن مجید نے بیان فرمائے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ سورہ النساء آیت نمبر 12۔ تمہارا ایسا نصف ہے تمہاری بیویوں کے ترکہ میں اگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو، اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارا ایسا چوتھا ہوگا اس کے ترکہ میں۔ اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی، ان کے چھوڑے ہوئے قرض کے ادا کرنے کے بعد عورتوں کا ایسا چوتھا ہے تمہارے ترکے میں اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کو تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں ایسا ملے گا جو وصیت تم نے کی ہے اس کی تعمیل اور قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ تو یہ اسلام کے اندر عورت کو باقاعدہ طور پر حصہ دار ٹھہرایا گیا، اس مال و دولت میں، اس اثاثے میں جہاں پر کے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور بعد میں عورتیں اور مرد وارث ہوں۔ اسلام کا یہ قانون وراثت جن بنیادوں پر قائم ہے ان کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اس سے اس کی حکمت کے بعد گوشے سامنے آئیں۔ وراثت کی ساری تقسیم خاندان کے افراد کے مابین ہوتی ہے، اس میں نسبی رشتوں اور نکاح کو بنیاد بنایا گیا۔ خاندان ایک مستقل اکائی ہے جس کے افراد کو نسبی رشتہ اور خونی تعلق بام جوڑ کے رکھتا ہے، ان کے درمیان محبت، ہمدردی اور تعاون کا فطری جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ عملاً ایک دوسرے کے نفع اور نقصان میں شریک ہوتے ہیں، ان کی ترقی میں مدد دیتے ہیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اسی وجہ سے خاندان سے انسان کی وابستگی بڑی گہری ہوتی ہے، وہ اس کی فلاح و بہبود کو دوسرے بہت سے فائدوں پر مقدم رکھتا ہے، اس کی معاشی تنگی وہ جس حالت میں بھی ہو تگ و دو سے دور کی جاتی، اور فطری طور پر خاندان کو اپنی دولت کے اندر شریک کرنا اور جائز حقدار کو اس کا حق دینا یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان بالعموم خونی رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے کاموں میں اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ وہ خاندانی کے افراد شمار ہوتے ہیں۔ یعنی نسبی رشتہ نہ بھی ہو، کہیں باہر سے بھی شادی ہوئی ہو، اب شادی کے بعد ان کا پھر بھی یہ جو تعلق ہے یہ بھی وراثت کے حقدار بننے کا سبب بنتا ہے، اور وراثت میں جو میاں بیوی بام ان میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے کے مال میں سے ان کا وارث بننا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد کے مقابلے میں جو عورت کا حق وراثت ہے، اس حوالے سے ہم اگر بات کریں تو یہ ترجیح بالکل واضح ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر بھی ان کو سب سے زیادہ قریب تصور کرتا ہے، اور عملاً بھی وہی اس کے قریب ہوتے ہیں جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں، جن کی بار براہ راست اور بلا واسطہ انہی سے تعلق ہوتا ہے، جو دولت اور سرمایہ وہ محنت اور مشقت سے حاصل کرتا ہے اسے ان پر خرچ کر کے وہ ایک طرح کی روحانی مسرت اور سکون محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے
1: coming up next. English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: You have to ask for help. You need help. And we go to parents and we go to friends and we go to everyone. And then no one will help. Sometimes you ask for help too much. So when you ask people too much, they even get fed up. So they don't help. When you cannot get help, what do? When there's no help available, then finally you turn around and say, Ya Allah. And you save him for last. True? Really, it should be in the very beginning. Everything you do and need, Bismillah. You start with the niyyah. Allah, if there is khair, make it happen. If there is no khair, then my heart will not be attached. I won't get hurt by this. It'll be up to you. I'm going to go in your path. Ask him for help. Then ask people for help. And he would put the abilities. And if you ask people too much, they get annoyed. You ask Allah too much, you get Jannah.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
4: On the authority of Zayd bin Khalid al-Juhani, may Allah be pleased with him, who said, The Holy Prophet, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, May I tell you about the best witness? He is the one who offers his testimony before he is asked for it.
5: Hazrat Zayd bin Khalid al-Juhani رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر گواہ وہ ہے جس نے گواہی دینے میں پہل کی اور پوچھنے سے پہلے سچ گواہی دینے کے لیے راضی ہوا.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
8: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.

0: Move for 10 आ गया है This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी